कृता निर्भव निर्वय अकाल मूर्त अजुनी सैगम गुर प्रसाद। जब आद सच जुगाद सच है भी सच नानक खुशी सच सोचे सोच न हो गई

अशंक मूर्ख अंध घोर अशंक चोर राम अशंक अमर कर जाए अशंक काल वाय शंख पापी पाप अशंक कूड़े आर करे फिर अशंक मलेच माल पाक खाए अशंक

पास विश्वित तरसी थापी तरम सा विश्वित कर्म करके नया अनेकन कर्मी कर्मी वह विचार का अब है सोहन पंच प्रवान सदरी कर्म सवै कच्छ खाई उत्थ पाए नानक गया।

0: कैसे कैसे रत्न तुम होंगे
1: कितिया
0: सुखी नानक अंत न अंत ज्ञान अंत में ज्ञान पर चंद

निर्भउ निर्वै अकाल मूरत अजूनी सैदम गुर प्रसाद। जब आद सच जुगाद सच है भी सच नानक उसी सच।

ओंकार सतगुर प्रसाद सो दर तेरा केहा सो घर केहा जित बह सर्ब संभाले वाजे तेरे नाद अनेक असंखा केते तेरे वावन हारे केते तेरे राग परिश्यों कहिय है केते तेरे गावन हारे गावन तुदनो पवन पानी बैसंतर गावे राजा धर्म द्वारे गावन तुदनो चित गुप्त लिख जानन लिख लिख धर्म विचारे गावन तुदनो ईश्वर ब्रह्मा देवी सोहन तेरे सदा सुवारे गावन तुदनो इंद्र इंद्रासन बैठे देवते आदर नाले गावन तुदनो सिद्ध समाधि अंदर गावन तुदनो साध विचारे गावन तुदनो जति सती संतोखी गावन तुदनो वीर करारे गावन तुदनो पंडित पढ़न रखीश्वर जुग जुग वेदा नाले गावन तुदनो मोहनिया मन मोहन स्वर्ग मछ पयाले गावन तुदनो रतनो पाए तेरे अठ सठ तीरथ नाले गावन तुदनो जोध महाबल सूरा गावन तुदनो खाणी चारे गावन तुदनो खंड मंडल ब्रह्मंडा कर कर रखे तेरे तारे से तुदनो गावन जो तुद भावन रते तेरे भगत रसाले होर किते तुदनो गावन से मैं चित न आवन नानक क्या बिचारे सोई सोई सदा सच साहिब साचा साची नाई है पी होसी जाए न जासी रचना जिन रचाई रंगी रंगी भाती कर कर जिनसी माया जिन उपाई कर कर देखै कीता अपना जो तिस दी वडियाई जो तिस भावै सोई करसी फिर हुक्म न करना जाई सो पात साहु साहा पत साहिब नानक रहन रजाई आसा महला पहला सुन वड्डा आखै सब कोए केवड़ वड्डा डीठा होए कीमत पाए न कहे आ जाए कहने वाले तेरे रहे समाए वड्डे मेरे साहिबा गहर गंभीरा गुणी गहीरा कोई न जाने तेरा किता केवड़ चीरा रहाओ सब सुरती मिल सुरत कमाई सब कीमत मिल कीमत पाई ज्ञानी ध्यानी गुर गुरहाई कहन न जाई तेरी तिल वड्याई सब सत सब तप सब चंगियाइया सिद्धा पुरखा किया वड्याइया तुद बिन सिद्धि किनै न पाईया कर्म मिलै ना ही ठाक रहाइया आखण वाला क्या बेचारा सिफती भरे तेरे भंडारा जिस तू देह तिसै क्या चारा नानक सच सुवारन हारा आसा महला पहला आखा जीवा विसरै मर जाऊं आखण औखा साचा नाओ साचे नाम की लागै भूख पुत भूखै खाए चलियै दुख सो क्यों विसरै मेरी माए साचा साहिब साचै नाए रहाओ साचे नाम की तिल वडे आई आख थके कीमत नहीं पाई जे सब मिलकै आखण पाहे वड्डा ना होवै घाट ना जाए ना उह मरै ना होवै सोग देदा रहै ना चूकै भोग गुण एहो होर ना ही कोए ना को हुआ ना को होए
जीवड़ आप तेवड़ तेरी दात, जिन दिन करके कीती रात, खसम विसारह ते कम जात, नानक नावै बाज सनात। राग गुजरी महला चौथा, हर के जानू सतगुरु सतपुरखा, बिनो करो गुरपास, हम कीरे किरम सतगुर शरणाई।

गुरमत ना मेरा प्राण सुखाई, हर कीरत हमरी रहरा सुरहाओ। हर जन केवट भाग वडेरे, जिन हर हर सरदा हर प्यास, हर हर नाम मिले तृप्ता सह, मिल संगत गुण परगास। जिन हर हर हर रस नाम न पाया, ते भाग हीन जम पास। जो सतगुर शरण संगत नहीं आए, त्रिग जीवे त्रिग जीवास। जिन हर जन सतगुर संगत पाई, तिन तुर मस्तक लिखिया लिखास। धन धन सत संगत जित हर रस पाया, मिल जन नानक नाम परगास। राग गुजरी महला पंजवा, काहे रे मन चित वह उदम, जा आहर हर जीव परिया। शैल पत्थर मह जंतु पाए, ताका रिजक आगे कर धरिया। मेरे माधो जी सत संगत मिले सो तरिया, गुर प्रसाद परम पद पाया। सूके काष्ट हरिया रहाओ, जनन पिता लोक सुत बनता। कोई न किसकी तरिया, सिर सिर रिजक संभाहे ठाकुर। काहे मन भाओ करिया, ऊडे ऊडावे सह कुसा। तिस पाछे बचरे छरिया, तिन कवन खलावे कवन चुगावे। मन मह सिमरन करिया, सब निदान दस अष्ट सिदान। ठाकुर कर तल तरिया, जन नानक बल बल सत।

सतगुर प्रसाद। सो पुरख निरंजन हर पुरख निरंजन, हर अगमा अगमा पारा, सब त्याव है सब त्याव है तुझ जी, हर सच्चे सिरजन हारा। सब जी तुम्हारी जी, तू जिया का दातारा, हर त्याव हो संतो जी, सब दुख विसारन हारा। हरे आपे ठाकुर हरे आपे सेवक जी, क्या नानक जंत विचारा, तू घट घट अंतर सर्व निरंतर जी, हर एको पुरख समाणा, एक दाते एक भेखारी जी, सब तेरे चोज विडाना। तू आपे दाता आपे भुगता जी, हाँ तुद बिन अवर न जाना, तू पार ब्रह्म बेअंत बेअंत जी, तेरे क्या गुण आख वखाणा। जो सेव है तुद जी, जन नानक तिन कुरबाणा, हर त्याव है हर त्याव है तुद जी, से जन जुग में सुखवासी, से मुक्त पहे जिन हर त्याया जी, तिन टूटी जम की फांसी, जिन निरपाओ जिन हर निरपाओ त्याया जी, तिन का पाओ सब गुवासी, जिन सेवया मेरा हर जी, ते हर हर रूप समासी, से धन जिन हर त्याया जी, जन नानक तिन बल जासी, तेरी भगत भंडार जी, परे बेअंत बेअंता, तेरे भगत सलाहन तुद जी, हर अनिक अनेक अनंता।

एक तेरे अनेक पढ़ै बहु सिमृत शास्त्र जी, कर क्रिया खट कर्म करंता। से भगत भले जन नानक जी, जो भाव है मेरे हर भगवंता। तू आदि पुरख अपरंपर करता जी, तुद जेवड़ अवर न कोई। तू जुग जुग एको, सदा सदा तू एको जी। तू निःचल करता सोई, तुद आपे भावै सोई वरतै जी। तू आपे करह सोई, तुद आपे श्रेष्ठ

हर गुण सद ही आख वखाणे, जिन हर सेविया तिन सुख पाया, सहजे ही हर नाम समाया। तू आपे करता तेरा किया सब हो, तुद बिन दू

मिल साध संगत भज केवल नाम, सरंजाम लाग भवजल तरन कै, जन्म वृथा जात रंग माया कह रहा। जप तप सं

एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह पातशाही दसवीं कब्यो बाज बेनती चौपाई हमरी करो हाथ दै रक्षा पूर्ण होए चित की इच्छा तब चरणन मन रहे हमारा अपना जान करो प्रतपारा हमरे दुष्ट सबै तुम काव हो आप हाथ दै मुहे बचाव हो सुखी बसै मोरो परवारा सेवक सिख सबै करतारा मोर अच्छा निज कर दै करियै सब बैरन को आज संगरियै पूर्ण होए हमारी आसा तोर भजन की रह प्यासा तुम्हें चाड कोई अवर न त्याऊ जो वर चाहूं सो तुम ते पाऊं सेवक सिख हमारे तारी है चुन चुन सत्र हमारे मारी है आप हाथ दे मुझे उबरी है मरण काल का त्रास निवरी है तू जो सदा हमारे पच्छा श्री अस तुझू करे हो रक्षा राख ले हो मुहि राखन हारे साहिब संत सहाये प्यारे दीन बंद दुष्टन के हंता तुम हो पुरी चतुर दशकंता काल पाए ब्रह्मा बाप तरा काल पाए शिवजू अवतरा काल पाए कर विष्ण प्रकाशा सकल काल का किया तुमासा जवन काल जोगी शिव कियो भेदराज ब्रह्मा जूथियो जवन काल सब लोक सुवारा नमस्कार है ताहे हमारा जवन काल सब जगत बनायो देव दैत जच्छन उपजायो

जा जिने आप सुवारी, शिवकन को सब गुण सुख दियो, सत्रन को पल मोह बद कियो, घट घट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत, चीटी ते कुंचर अस्थूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला, संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी, एक एक की पीर पछाने, काट काट के पट पट की जाने, जा उद करक करा कर तारा, प्रजा तरत तब देहे अपारा, जब आकर्क करत हो कब हूँ, तुम मैं मिलत देह तर सब हूँ, जेते बदन सिर सब तार है, आप अपनी बूझ उचार है, तुम सब

संत पिन पिन तुहे तेती तुमरा लखा न जाए पुसारा केह बिद सजा प्रथम संसारा एक रूप अनूप स्वरूपा रंक भयउ राव कही पूपा अंडज जेरज सेतज कीनी पुत भुज खान बहुर रच दीनी कहूं फूल राजा हवै बैठा कहूं सिमट भयो शंकर कैठा सिगरी सृष्टि दिखाए अचम भव आद जुगाद स्वरूप स्वयं भव अब रक्षा मेरी तुम करो सिखो वार सिख संगरो दुष्ट जिते उठवत उत्पाता सकल मलेश करो रण काता जे अस तुझ तव सरणी परे तिनके दुष्ट दुख तहवै मरे पुरख जवन पग परे तिहारे तिनके तुम संकट सब टारे जो

दुष्ट अरिष्ट टरै तत्काल, कृपा दृष्ट तन जाहि निहरिहु, ताकि ताप तनक मह हरिहु, रिद्ध सिद्ध करमु सब हुई, दुष्ट छाह छव सकै न कोई, एक बार जिन तुम्हें संवारा, काल वास्ते ताहे उबारा।

मेरा आधारु। वाजे पंच शब्द तिद घर सुभागै, घर सुभागै शब्द वाजे कला जित कर धारिया। पंच दूत तुद वस कीते काल कंटक मारिया, तुर कर्म पाया तुद जिन कौ, से नाम हर कह लागी। कह नानक तह सुख हुआ, तित घर अनहद वाजे, अनद सुनहु।

अनहद तूरे सुनते पुनीत कहते पवित सतगुर रहया पर पूरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे मुंदावनी महला पंजवां।

नित रख उर तहारु, तम संसार चरण लग तरिये, सब नानक ब्रह्म पसारू। श्लोक महला पंजवां।

0: कर गुरु कल की तार जगदीश बोले सुनिहार सत श्री अकाल।
1: वाहेगुरु जी का खालसा
0: वाहेगुरु।

तेरा एक नाम तारे संसार मालक जी, मैं एह आस एहो आदा तो मैं आया, सरनी आया परोसे आया, जो पावे त्यो राखो स्वामी मार्ग, गुरहे पठाया सतगुर आयो सण तुहारी, मिले सोख नाम हर शोभा, चिंता लाही हमारी। सो इनिक सेवा प्रवान हुईया पुला चुका किमक नी अगले प्रोग्राम सरण करिए सिख पंथ दे विद्वान सत्कार्यो ज्ञानी लखविंदर सिंह जी उन्ना पासो तन तन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी की गुरबाणी की लड़ीवार विचार गुर इतिहास सिख इतिहास सरवण करिए दस वालों फतेह प्रवान करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

क्या तन तन तन गुरु ग्रंथ साहिब जी शब्द गुरु दाता जी आप जी दे मुबारक तरते अरदास बेनती है सचे पातशाह आप जी दे पाणे अंदर चार पहर दिन सुखां दा प्रतीत होया अमृत वेले तो देर रात तक आप जिया ने खुले दर्शन दे दर देखे निहाल कीता महाराज जी रात दे दीवाना दी संपूर्णता आप जी दे स्वरूप दी सुखासन साहिब जी दी सेवा सोहला साहब जी की बाणी का जाप किया गया महाराज जी सेवा करद बेअंत भुला हो जाएं ने अपने बच्चों अणजाण समझ के बख्श लेना अपने दर घर के कीर्तनिया वजीर साहबानू सदा साज के निवाज के सारे कार्य अरदास करो सब संगतान की तिल फुल भेटा दर प्रवान करो दाता जी रहना ही है सुखमई बतीत आग्ञा बख्शिश करो निज अस्थान सचखंड पलंग ते विराजमान होवो अमृत वेले फिर दर्शन बख्शना सुख होवे नाम जितावे नानक नाम वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह।

0: सुख मनी सुख अमृत प्रवना
1: भगत जना के मन विश्राम
0: रब के सिमरन गर्भ न बसे
1: रब के सिमरन दुख जम न सहे
0: रब के सिमरन काल पर हरे
1: रब के सिमरन दुश्मन टरे
0: रब सिमरत कछ बिघन न लागे
1: रब के सिमरन हम दिन जागे
0: रब के सिमरन भव न व्यापे
1: रब के सिमरन दुख न संतापे।

0: रव को सिमरह से
1: जन परवान,
0: रव को सिमरह से पुरख प्रधान,
1: रव को सिमरह से

0: अल्लाह,
1: नानक जन की मंगह रो अल्लाह,
0: प्रभु को सिमरह से पर उपकारी,
2: प्रभु को सिमरह तिन सद बलिहारी,
0: प्रभु को सिमरह से मुख सुहावे,
2: प्रभु को सिमरह तिन सुख बिहावे,
0: प्रभु को सिमरह तिन आत्म जीता,
2: प्रभु को सिमरह तिन निर्मल रीता,
0: प्रभु को सिमरह तिन आनंद कनेरे,
2: प्रभु को सिमरह वसे हर नेरे,
0: संत कृपा ते अन दिन जाग,
2: नानक सिमरन पूरे भाग,
0: प्रभु के सिमरन कार्य पूरे,
2: प्रभु के सिमरन कबहु न चूरे,
0: प्रभु के सिमरन हर गुण बानी,
2: प्रभु के सिमरन सहज सुमानी,
0: प्रभु के सिमरन ने चले आसन,
2: प्रभु के सिमरन कमल विगासन,
0: प्रभु के सिमरन अनहद चुनकार,
1: सुख प्रभु सिमरन का अंत न पार,
0: सिमरै से जन जिन को प्रभु मया,
2: नानक तिन जन सरनी भया,
0: हर सिमरन कर भगत प्रगटाए,
2: हर सिमरन लग वेद पाए,
0: हर सिमरन भए सिद्ध जति दाते,
2: हर सिमरन नीच चोह पुंज जाते,
0: हर सिमरन धारी सब धरन।

0: धर्म मह श्रेष्ठ धर्म
1: हर को नाम जप निर्मल कर्म
0: सगल क्रिया मह मूतम क्रिया
1: साध संग दुर्मत मल हिरिया
0: सगल उद्दम मह उद्दम भला
1: हर का नाम जपो जी सदा
0: सगल वाणी मह अमृत वाणी
1: हर को जसो

0: अगन महज नह उबारिया।
1: पार व्यवस्था तुझ प्यारे दूध,
2: जो वन भोजन
1: बिरद भया ऊपर साख सैन,
0: मुख भया बैठ को दैन,
1: एहो निर्गुण गुण कछु न बूझे,
2: मोक्ष लियो तै नानक सीजे,
1: एह प्रसाद तारू पर सुख बसे,
2: सुत प्रात मीत।

0: जीवन सो दूर पुराने
1: छोड़ जाए किसका श्रम करे
0: संग सहाय तिस्वर हरे
1: चंदन लेप उतारे तोए अंधकूप में पतित विकराल
0: दयाल
1: करतूत पशु की मांस जात
0: लोक बचारा करे दिन रात
1: बाहर पेखंतर मल माया
0: रात नहीं कछ करे छिपाया
1: बाहर ज्ञान ध्यान स्नान
0: अंतर व्यापे लोग सुहान
1: अंतर अगन बाहर तन स्वान।

0: जेह प्रसाद शक्ति अमृत खाहे।
1: किस ठाकुर को रख मन मारे,
0: जेह प्रसाद सुगंधत तन लाव है।
1: किसको सिमरत परम गत पाव है,
0: जेह प्रसाद बस है सुख मंदर।
1: जिसह त्याय सदा मन अंदर,
0: जेह प्रसाद ग्रह संग सुख बसना।
1: आठ पहर सिमरो तिस रसना,
0: जेह प्रसाद रंग रस भोग।
1: नानक सदा त्याय त्यावन जोग,
0: जेह प्रसाद पाठ पटंबर हलाव है।
1: जिसह त्यागत अवर लुभाव है,
0: प्रसाद सुख से सुविजय।
1: मन आठ पहर का जस गाविजय,
0: प्रसाद तुझ सब को मन।
1: मुखता को जस रसन बखान,
0: प्रसाद तेरु रहता धर्म।
1: मन सदा त्याय की वुल पार ब्रह्म,
0: जी जब दर्घ है मान पाव है।
1: नानक पद से टी कर जाव है,
0: प्रसाद आरोग कंचन देही।
1: लिव लाव तुस राम स्नेही,
0: प्रसाद तेरा ओला रहत।
1: मन सुख पाव है हर हर जस कहत,
0: प्रसाद तेरे सगल छिद्र ठाके।
1: मन सरनी पर ठाकुर प्रभु ताके,
0: प्रसाद जज को न पहुचे।
1: मन सास सास सिमरहु प्रभु उचे,
0: प्रसाद भाई दुर्लभ दे।
1: नानक ताकी भगत करे,
0: प्रसाद आप खन बहरी जय।
1: मन ते सिमरत क्यों आलस की जय,
0: प्रसाद अस हस्त अस बारी।
1: मन तिस प्रभु को कबहु न बिसारी,
0: प्रसाद बाग मलक रना।
1: राख प्रोय प्रभु अपने मना,
0: जिन तेरी मन बंत बनाई।
1: उठत बैठ सत्य सहते आई,
0: सहते आए जो एक अलख है।
1: इहा उहा नानक तेरी रखे,
0: प्रसाद करह पुन बहुदान।
1: मन आठ पहर कर

0: साधु के संग सब कुल उदार है,
1: साध संग साजन में कटम निस्तार है,
0: साधु कै संग सो धन पावे,
1: संत सबको बरसावे,
0: साध संग धर्म राय करे सेवा,
1: साध के संग सो पासर देवा,
0: साधु कै संग पाप परायन,
1: साध संग मृत गुण गायन,
0: साध के संग सब थान गम,
1: नानक साध के संग सफल जन्म,
0: साध के संग नहीं कछ काल,
1: दर्शन पेट तो निहाल,
0: साध के संग कलू कत हरे।

0: साध की उपमा ते गुण ते दूर,
1: साध की उपमा रही परपूर,
0: साध की शोभा का नाही अंत,
1: साध की शोभा सदा बेअंत,
0: साध की शोभा उस

0: ब्रह्म ज्ञानी की सब परमया
1: ब्रह्म ज्ञानी ते कछ बुरा न पाया
0: ब्रह्म ज्ञानी सदा संदर्शी
1: ब्रह्म ज्ञानी की दृष्ट मृत वर्षी
0: ब्रह्म ज्ञानी बंधन से मुक्ता
1: ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल जूता
0: ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान
1: नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ज्ञान।

0: पद बिखिया पर हरै
1: मन की वासना मन ते टरै
0: इंद्री जित पंच दोख ते रहत
1: नानक कोट मध्य को ऐसा परस
0: वैष्णो सो जिस ऊपर सो प्रसन्न।

0: एक मुग्ध पाथर को तार
1: सर्व रोग का औखद नाम
0: कल्याण रूप मंगल गुण गामो
1: काहू जुगत कित न पाई धर्म
0: नानक किस मिले जिस लिखिया तुर कर्म
1: जिसके मन पार ब्रह्म का निवास
0: जिसका नाम सत राम दास
1: आत्म राम तिस नदरी आया
0: दास संतन पाए तिन पाए।

0: जीवन मुक्त सो कहावै।
1: तैसा हरख तैसा उस सोग,
0: सदा आनंद तै नहीं वियोग।
1: तैसा स्वर्ण तैसी उस माटी,
0: तैसा अमृत तैसी बिखाटी।
1: तैसा मान तैसा अभिमान,
0: तैसा रंक तैसा राजान।
1: जो वरताए साई जुगत,
0: नानक हो पुरख कही है जीवन मुक्त।
1: और ब्रह्म के सगले ठाओ,
0: जित जित कर रखे तैसा।

0: कई कोट वेद के श्रोते
1: कई कोट विसर होते
0: कई कोट आत्म ध्यानता रहे
1: कई कोट कवता विचारे
0: कई कोट नवत नाम त्याव
1: है नानक एकांत नंदावे
0: कई कोट भय अभिमानी
1: कई कोट अंध ज्ञानी
0: कई कोट कृपण कठोर
1: कई कोट अपेक्ष आत्म निकोर
0: कई कोट पर दर्व को फिर है
1: कई कोट पर दुख न करे
0: कई कोट माया श्रम माहे
1: कई कोट पर देश
0: जित जित लाभ तित तित लगना
1: करते की जाने करता रचना
0: कई कोट सिद्ध जति जोगी
1: कई कोट राजे रस को
0: कई कोट पंखी सर्प पाए
1: कई कोट पातर बिरख मिल जाए
0: कई कोट पवन पानी बैसंतर
1: कई कोट देश को मंडल
0: कई कोट ससियर सूर नक्षत्र
1: कई कोट देवदान विंदर से छत्र
0: सगल सुमग्री अपने सूत तारे
1: नानक जिस जिस पावे तिस
0: कई कोट राज स्थान सातक
1: कई कोट वेद प्राण सिमरत सात
0: कई कोट

0: अलग रहे अपार
1: कई कोट पाताल के वासी
2: कई कोट नर स्वर्ग वासी
1: कई कोट जन्म है जीव है मर है
2: कई कोट बोजोनी प्र
1: कई कोट बैठते ही खाहे
2: कई कोट काले तक पाहे
1: कई कोट मा कई कोट किए तनवंत
2: कई कोट माया में चिंत
1: यह जह पाना तह तह रखे
0: नानक सब किस प्रभु कह राखे
1: कई कोट भय बैरागी
0: राम नाम संग चंद्र बिलागी
1: कई कोट प्रभु को खोजनते कई कोट दर्शन प्रप्यास
0: इनको मिले ओ प्रभु नाथ
1: कई कोट मांगे सत्संग जिनको हुए अब सुप्रसन्न
2: नानक ते जन सदा धन धन
1: कई कोट

0: कई कोट पार ब्रह्म के दास
1: तिन होगत आत्म प्रकाश
0: कई कोट तत् के बीते
1: सदा निहारे एको नेत्र
0: कई कोट नाम रस पीवे
1: अमर पय सरसदी जीवे
0: कई कोट नाम गुण गावे।

0: सगले फिर थारे
1: अनक तपस्या करे अहंकार
0: नरक स्वर्ग फिर अवतार
1: अनक जतन कर आदम नहीं द्रव
0: हर दरगह को कैसे गवे
1: आपस को जो भला कहावे
0: किसे भलाई निकट न आवे
1: सब की रेंजा का मन होए
0: कहो नानक ताकि निर्मल सोए
1: जब लग जाने मुझते कछ होए
0: तब इसको सुख ना ही कोए
1: जब हे जाने मैं किच करता
0: तब लग गर्भ जोन मैं फिरता
1: तारे को बैरी मीत
0: तब लग निचलना ही चीत
1: जब लग मोह मगन संग माए
0: तब लग धर्म राय देश जाए
1: कृपा ते बंधन टूटे
0: गुर प्रसाद नानक हो छूटे
1: जैस कटे लग को उठता वे
0: तृप्त न आवे माया पाछे पावे
1: अनक भोग मिखिया के करे
0: मैं तृप्तावे कब कब मरे
1: बिना संतोख नहीं को राजे
0: सुखन मनोरथ बिरथे सब काजे
1: नाम रंग सर्व सुख होए
0: बड़पागी किसे प्राप्त होए
1: करन करा बनो आपे आप
0: सदा सदा नानक हर जाप।

0: सोई
1: अपने चल आप गण है हार
0: कौतुक करे रंग अपार
1: मन में आप मन अपने माहे
0: नानक कीमत कह न जाए
1: सत सत सत प्रभु स्वामी
0: गुरु प्रसाद किने वख्यानी
1: सच सच सच सब कीना।

0: संत के दुखन आर जा कटे,
1: संत के दुखन जमते नहीं छुटे,
0: संत के दुखन सुख सब जाए,
1: संत के दुखन नरक मह पाए,
0: संत के दुखन मत हुए मलीन,
1: संत के दुखन शोभतहीन,
0: संत के हते को रखे न कोई,
1: संत के दुखन थान भ्रष्ट होए,
0: संत कृपाल कृपा जे करे,
1: नानक संत संग निंदक भीतर,
0: संत के दुखन ते मुख पवे,
1: संतन के दुखन काग ज्यों लवे,
0: संतन के

0: संत के निंदक को सर्व रोग,
1: संत के निंदक को सदा बिजोग,
0: संत की निंदा दुख में दुख,
1: नानक संत पावे ता उसका भी होए मोख,
0: संत का दुखी सदा पवित्र,
1: संत का दुखी किसह का नहीं मित,
0: संत के दुखी को डान लागे,
1: संत के दुखी को सब त्याग,
0: संत का दुखी महा अहंकारी,
1: संत का दुखी सदा भिखारी,
0: संत का दुखी जिन में मरे,
1: संत की दुख न सुखते तरह,
0: संत के दुखी को न ही ठा,
1: नानक संत पावे ता लय मिलाए,
0: संत का दुखी अत बीच के टूटे,
1: संत का दुखी कित गाज न पहुंचे,
0: संत के दुखी को ध्यान फरमाइए,
1: संत का दुखी उजड़ पाइए,
0: संत का दुखी अंतर ते थोथा,
1: सांस बिना मृतक की लोथा,
0: संत के दुखी की जड़ किछ नाही,
1: अपन बीज आपे ही खाए,
0: संत के दुखी का वरण रखन हार,
1: नानक संत पावे ता लय उबार,
0: संत का दुखी इउं बिल लाए,
1: इउं बिजल मिहुं मछली तड़फड़ाए,
0: संत का दुखी भूखा नहीं राजे,
1: जो पावक ईंधन नहीं प्राप्त,
0: संत का दुखी छुटे केला,
1: जो बुआड़ तिल खेत माहे दोहेला,
0: संत का दुखी धर्म ते रहत,
1: संत का दुखी सद मिथ्या कहत,
0: किरत निंद का तुर ही पया,
1: जो तिस पावे सोई थया,
0: संत का दुखी बिगड़ रूप हो जाए,
1: संत के दुखी को दरगह मिले सजाए,
0: संत का दुखी सुधा सहकाई है,
1: संत का दुखी ना मरे ना जीवाइये,
0: संत के दुखी की पूजे नयासा,
1: संत का दुखी उठ चले निराशा,
0: संत के दुख न त्रिष्टे कोई,
1: जैसा पावे तैसा कोई होए,
0: भया कीर्तन मिटे कोई,
1: नानक जाने सच्चा सोए,
0: सब काट तिसके करने हार,
1: सदा सदा तिस

0: जिसका हुक्म भू सुख होए,
1: जिसका नाम रख कंठ पड़ोए,
0: सिमर सिमर सिमर प्रभ सोए,
1: नानक विघ्न न लागे कोए,
0: पुष्ट मन में कर निरंकार,
1: कर मन मेरे सत व्यवहार,
0: निर्मल रसना अमृत पियो,
1: सदा सोहेला कर ले जियो,
0: नैनो पेखता कुर का रंग,
1: साध संग बिनसै सब संग,
0: चरण चलो मार गोबिंद,
1: मिटाए पाप जपिए हर बिंद,
0: कर हर कर्म श्रवण हर कथा,
1: हर दरगह नानक उज्जल मथा,
0: बड़ भागी तेज।

0: जन होते सुखी
1: एको एक एक पहचान है
0: इत उत की ओह सो जी जान
1: नाम संग जिसका मन मानिया
0: नानक तिन है निरंजन जानिया
1: गुर प्रसाद अपने आप सुजे
0: की जान हो तृष्णा बुझे
1: सा संग हर हर जस कहत
0: सर्व रोग ते ओ हर जन रहत
1: अंधे कीर्तन केवल बख्यान
0: मैं सोई निर्वाण
1: एक ऊपर जे जन की आशा
0: इसकी कटिया जम की वासा
1: कार ब्रह्म की जिस मन भूख
0: नानक ते सहना लागे दुख
1: जिसको हर ब्रह्मन चित आवे
0: तो संत सोए ला नहीं दुलावे
1: जिस प्रभु अपना कृपा करे
0: तो सेवक कहो किसते डरे
1: जैसा सा तैसा दृष्टाया
0: अपने कार्य में आप समाया
1: सोदत सोदत सोदत सीजिया
0: गुरु प्रसाद तत सब बुझिया।

0: सदबल हार है।
1: चरण साध के धोए धोए पियो,
0: हर प्रसाद को अपना दियो,
1: साध की तूर करो स्नान,
2: साध ऊपर जाइए कुर्बान,
1: साध सेवा वड भागी पाइये,
0: साध संग हर कीर्तन गाइये,
1: अनक बिगनते साधु राखे,
0: हर गुण गाय अमृत रस चाखे,
1: गई संते धराया,
0: सर्व सुख नानक ते पाया,
1: मृतक को जीवा लड़हार,
0: भूखे को देवता दार,
1: सर्व नदान जाकी दृष्टि माहे,
0: पूर्व लिखे का लहना पाहे,
1: इसका करने जोग,
0: इस बिन दूसर हुआ न होग,
1: जप जन सदा सदा दिन रहनी,
0: सब ते ऊंच निर्मले करनी,
1: कर कृपा जिसको नाम दिया,
0: नानक सोजन निर्मल थिया,
1: के मन गुर की प्रतीत,
0: इस जन आवे हर प्रवचीत,
1: भगत भगत सुनिए तैलोए,
0: जाके हृदय एक होए,
1: करनी सचता की रहत,
0: सच हृदय सतमुख।

0: शिव को कृपालन हारा
1: शिव की रखे निरंकारा
0: तो सेवक जिस दया प्रवतार है
1: नानक सो सेवक सास सास मारे
0: अपने जन का परदा टाक है
1: अपने सेवक की सर पर रखे
0: अपने दास को देव डाई
1: अपने सेवक को नाम जपाई
0: अपने सेवक किया पत रख है रब के सेवको को न पहुँचे
1: सेवक
0: जो प्रभु अपनी सेवा

0: जन जन में पार ब्रह्म
1: एक है आप नहीं कछ परम
0: जैसे अण प्ले आना जाइए
1: नानक ऐसा गुरु बड़का की पाइए
0: सफल दर्शन पेकत पनीत
1: परसत चरण गत निर्वल रीत
0: संग्राम।

0: संत
1: गुण में अंत कीमत नहीं पाए,
0: नानक जिस भावै तिस लय मिलाए,
1: हिबा एक उस अनेक,
0: सत पुरख पूरन विवेक,
1: कहो बोल न पोचत प्राणी,
0: अगम अगोचर प्रभ निर्वाणी,
1: निराहा निर्वैर सुखदाई,
0: ताकि कीमत किन्हें न पाई,
1: अंग भगत बंधन नत करे,
0: चरण कमल हृदय सिमरहे,
1: सत बलिहारी सतगुरु अपने,
0: नानक जिस प्रसाद ऐसा प्रभ जपने,
1: यो रस पावे जन कोए,
0: अमृत पीवे अमर सुबह।

0: मना
1: सुत मीत कुटुंब अरवंता
0: इनते कहो तुम कवन सुनाता
1: राज रंग माया विस्तार
0: इनते कहो कवन छुटकार
1: अस हस्ती रथ सवारी
0: झूठा डंप झूठ पासारी
1: जिन दिए तिस बुझन बगाना
0: नाम विसार नानक पछताना
1: गुर की मत तू ले आने
0: भगत बिना बहु डूबे सियाने
1: हर की भगत करो मन मीत
0: निर्मल होए तुम्हारो चीत
1: चरण कमल राख मन माहे
0: जन्म जन्म के किल बिख जाहे
1: आप जप हो अबरा नाम जपाव
0: सुनत कहत रहत गत पावो
1: सार पूत सत हर को नाओ
0: सह सुबाय नान गुन गाओ
1: गुन गाव तेरी उदर समैल
0: विंस जाए हम मैं बिख फैल
1: ओहे अचिंत बसाय सुख नाल
0: सास ग्रासर नाम समाल
1: चाड़ सियाण सगली मना
0: सात संग पावे सच तना।

0: पूरन पुरख नहीं डोलाने
1: भर भरे प्रेम रस रंग
0: चाओ साध कै संग
1: परे शरणान सब त्याग
0: अंतर प्रगास अंध निर्मलाग
1: बड़ भागी जपया प्रभ सोए
0: नानक नाम रते सुख होए
1: शिव की मनसा पूरी पही
0: सतगुरु ते निर्मल मत ले
1: जन को प्रभ होयो दयाल
0: सेवक कीनो सदा
1: निहाल बंधन काट मुक्त जन भया
2: जन मरण दुख परम परम।

0: हम निर्गुण यार नीच अजान,
1: नानक तुमरी शरण पुरख भगवान।
0: सर्व वैकुंठ मुक्त मोख पाए,
1: निमक हर के गुण गाए।
0: अनेक राज भोग बढ़ियाई,
1: नाम की कथा मन पाई।
0: बहु भोजन कापुर संगीत,
1: रसना जपती आराम हेत।
0: भली सुकरणी शोभा तनवंत,
1: हृदय बसे पूरा।

0: तब हर्ष शोक कहो किसै व्यापक
1: अपने आप पार ब्रह्म
0: सब मोका सुशोभ परम
1: अपन केला बरतीजा
0: दान करने हार न
1: दूजा जब होवत प्रभु केवल तनी
0: तब बंद मुक्त कहो किसको बनी
1: जब एके अर्गम पार
0: तब नरक स्वर्ग कहो कौन होता
1: जब निर्गुण प्रभु सहस वाए
0: तब शिव शक्त कहो कित ठाए
1: जब आपे आप अपनी ज्योतरे
0: तब कवन निडर कवन
1: अपन चरित सब करने हार
0: नानक ठाकुर अगम अपार
1: अविनाशी सुख अपने आसन
0: ए जन्म मरण को कहा बिना
1: जब पूर्ण कर्ता प्रभु सोए
0: तब जम की त्रास कहो किस होए
1: जब गुत गोचर पविका
0: तब चित्र गुप्त किस गोचित लिखा
1: जब नाद निंजन गोचर गा दे
0: तब कौन छुट्टे कौन बंधन बाते
1: अपना पापी चल जा
0: नानक अपन रूप आपी उपर जा
1: निर्मल पुरख पुरख पत होता
0: तह बिन मैल कहो क्या तोता तै कौन को मान कौन अभिमान
1: स्वरूप केवल जगदीश
0: तै चल चिदर लगत को कीश
1: जो स्वरूपी जो संसुमा
0: तै किसे कवन तृप्ताव
1: करण करावन करने हार
0: नानक करते का नहीं समार
1: जो अपनी शोभा अपन संग बनाई
0: तब कवन माए बाप मित्र सुत पाए।

0: अस्पति
1: आप कथ आप सुनहार
0: आप एका विस्तार
1: जात सुपावे ता सृष्टि उपाय
0: आपने पाने ले समाये
1: तुम ते पिन नहीं किछ होए
0: आपन सूत सब जगत परोए
1: जा को प्रभ जियो आप बुझाए
0: सच नाम सो ही जन पाए
1: सो समदर्शी तत् का बेता
0: नानक सगल सृष्ट का जेता
1: जी जंत्र सबता कह हाथ
0: दीन दयाल अनाथ को नाथ
1: जिस राख है तिस कोय न मारे
0: सो मुआ जिस मनो बिसारे
1: तिस तज अबर कहा को जाए
0: सब सिर एक निरंजन राय।

0: संत पेटिया नानक मन परगाष्टपति
1: संत संग अंतर प्रवडीठा
0: प्रभु का लागा मीठा
1: सगल सुमकरी।

0: गोपाल दामोदर दीन दयाल
1: दुख भंजन पूरन कृपाल
0: सिमर सिमर नाम बारंबार
1: नानक जी का यह आधार
0: उत्तम श्लोक साध के।

0: सुन रसना कहते
1: कर प्रसाद दया प्रवतारी
0: नानक निभि खेप हमारी
1: प्रभु की उस्तत करहो संत मीत
0: सावधान एकाग्र चीत
1: सुख मनी सहज गोविंद गुणनाम
0: जिस मन बसै सुहूत निदान
1: सर्व इच्छा ताकी पूर्ण होए
0: प्रधान पुरुष प्रगट सब लोए।

0: स्वास्थ आत पाणी परमाओ सत सुहाण सदा मन चाओ
1: कवण सो वेला वक्त कवण कवण थित कवण वार
0: कवण से रुचि माहो कवण जित होआ आकार
1: वेल न पाया पंडित जी होवे लेख पुराण
0: वक्त न पायो।

0: अनूप है, अजू है, अपू है,
1: अलेख है, अपेख है, नाम है, अकाम है,
0: अधे है, अपे है, अजीत है, अपीत है,
1: तर्मान है, निदान है, तर्वर्ग है, असर्ग है,
0: अनिल है, अनाद है, अजय है, आजाद है,
1: अजन्म है, अवर्ण है, अपूत है, अवर्ण है,
0: अगंज है, अपंज है, अचूज है, अचंज है,
1: अमीक है, रफीक है, तंज है, अबंध है,
0: निर्बूज है, असूज है, अकाल है, अजाल है,
1: अल्लाह है, अजाल है, अनंत है, अनंत है,
0: अलीक है, नृसृक है, निर्लंब है, असंब है,
1: अजम है, अभूत है, अच्युत है,
0: अलोक है, अशोक है, अकर्म है, अपर्म है,
1: अजीत है, अपीत है, अबा है, अगा है,
0: अमान है, निदान है, अनेक

0: पतंगी परमाथे समस्ति बबूते
1: कलंकंग बिना नेक लंकी स्वरूपे
0: नमो राज राजेश्वरम परम रूपे
1: नमो जोग जोगवेश्वर।

0: प्रयात छंद चतुर चक्र करता चतुर चक्र हरता
1: चतुर चक्र जाने
0: चतुर चक्र वारती चतुर चक्र भारती
1: चतुर चक्र पाले चतुर चक्र काले
0: चतुर चक्र पासे चतुर चक्र वासे
1: चतुर चक्र माने।

0: सर्वत्र पाहो
1: के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पेश है के सर्वत्र हंता के सर्वत्र गंता के सर्वत्र काज है के सर्वत्र राज है
0: के सर्वत्र सोखा के सर्वत्र भूखा
1: के सर्वत्र त्राण है के सर्वत्र प्राण है
0: के सर्वत्र देश है के सर्वत्र पेश है
1: के सर्वत्र मन है सदैव प्रधान्य है
0: के सर्वत्र जाप है के सर्वत्र थाप है
1: के सर्वत्र पान है।

0: तिरपंगी तिरकामे
1: तिरबरगं तिरबादे आगंजे आगादे
0: सर्वभागे सुसर्वा अनुरागे
1: तिरभोगत स्वरूप है अशेज है अशूत है
0: प्रवास
1: निरुक्त प्रभा है सदैव सदा है
0: स्वरूप प्रजक्त अनुप है
1: निरुक्त सदा है विभुक्त प्रभा है
0: स्वरूप प्रजक्त अनुप है
1: चाचरी छंद अपंग है अनंग है अपेत है अलेख है
0: कर्म है कर्म है जगत है
1: अजय है अभय है अपूत है अतूत है
0: नाश है दास है अतंत है अबंध है
1: अपगत है विरक्त है अना

0: नमो परम सत्संग स्वरूपे,
1: नमो जोग जोगे, नमो ज्ञान ज्ञाने,
2: नमो मंत्र मंत्रे, नमो ध्यान ध्याने,
1: नमो ज्योत ज्योते।

0: आज कहूँ सुन ले हो सबा जिन प्रेम की ओ तन ही प्रपायो।
1: काहुल कहन पूज तरियो सिर काहुल लिंग गरे लटकायो।
0: कहूँ लखे हो अरब।

0: सकल मलेश्वरो रण कर्ता
1: यस्त तब सरनी परे
0: तिनके दुष्ट दुष्ट हमारे
1: मूर्ख जवन पग परे तिहारे
0: तिनके तुम संकट सब तारे
1: जो कल को एक बार त्याए हैं
0: ताके काल निकट नए हैं
1: दिशा होए ताई सब काला
0: दुष्ट अरिष्ट करे तत्काला
1: कृपा दृष्ट तन जाहे नहर।

0: जैसी अगन उधर में तैसी बाहर माया
1: माया अगन सभी को जेही करता खेल रचाया
0: दस पाणा ता जमया परवार पला पाया
1: लिर छुड़की लगी तृष्णा माया अमर बताया
0: ये माया जित हर विसर मुह उपजा भौ दूजा लाया
1: नानक गुर प्रसादी जिना ने लागी दिन विचे माया पाया
0: और आप अमोल

सच्चा होए कूड़ की मल उतरै तनकरे हच्छा धोए सत्ता पर जानिए जा सच धरे प्यार नाओ सुनमन रहसिए कहां पाए मोग द्वार सचता पर जानिए जा जुगत जाने जियो सत का आया साध कै विच दे करता बियो

जिन पट अंदर बाहर गुजरते पले संसार, तनने हो लगा रब से ती देखने विचार। रंग हसे रंग रोवे चुप पी कर जाए, परवाह नाही किसे केरी बात सचे ना। दरबार तू प्रकट मंगा जब देता।

सोरठ महला पांजवा गुरपूरा चरनी लाया हर संग सहाई पाया जह जाइए तहां सोहेले कर कृपा प्रभ मेले। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

0: रहाओ। नारायण प्राण अदारा, प्राणा का आसरा केवल वाहेगुरु, उस तो बिना कोई प्राणा का आसरा नहीं दे सकता। तो जेडे उसके चरणों में जुड़े आ, हम संत जना रे नारा, इलाही बाणी च संत अल्फाज परमेश्वर वास्ते भी आया, संत लफ्ज गुरु वास्ते भी आया, संत शब्द गुरु की संगत लिए भी आया है, ते संत शब्द जड़ा है वो जिहड़ा अवस्था नूं पुछिया खास व्यक्ति उहदे नाल नाल भी आया है। जिहड़े गुरु के प्यारे चरण उन्हां दे चरणां दी धूड़ पतित पुनीत कर ली ने, पतित हो जाना, धर्म च दाखल होना, धर्म तों डिग पैना, लेकिन कितने पछतावा हो जाए ना, फिर बाबा सत्ता जी या बाबा बलवंडा जी वांगू, ते गुरु कहिंदा हुण तैनूं पवित्र नहीं पुनीत कर लवांगा, तैनूं दोबारा अपने बराबर बिठा देंगा, इन्ना माण आयल देंगा, कर किरपा हार जस दीने। फिर उन्हूं की दिंदा है, हो गया सी पतत, टुट गया सी गुरु कोलों, दुखी होया, दुखी होए नूं समझ आई भी दुख गुरु नूं कटना, गुरु कोले आया, ते गुरु कहिंदा आ, फिर उहदा जस गा बाबा सत्ता बलवंडा ने उस वाहिगुरु की फिर जस चवार गाई। पार ब्रह्म करे प्रतिपाला, सद जी संगर वाल। फिर हुण किसे कोले मंगदा नहीं कि उह मेरी पालना उह वाहिगुरु अकाल पुरख कर रहा है, मेरे जी दा राखा है। हर दिन रहन कीर्तन कर गाइए, बहुर ना जूनी पाइए, उहदी कीर्ति दिन रात कर, फिर जूनिया विच नहीं आवेगा। जिस देवै पुरख विधाता, हर रास्ते नहीं जाता, इह दावा नहीं हो सकता, उहदे चरणां नाल जुड़ना है, उह टुट के दास देवे। जे तू आखे कि मैं सवेरे 2 बजे उठिया सी ते मेरा दावा हो गया, नहीं इह नहीं, उठ के इह आखे दाता तेरा शुक्र है, वह उठा लिया है। नितनेम होया संपूर्ण आखी दात्या शुक्र है, तू करा लिया, दावा ना करी। मैं कह जिन्हां ने दावा नहीं किया उन्होंने उस नाम रस नूं जाणिया है। जम कंकर नेड़ न आया, सुख नानक सरनी पाया। जिस जम उत्ता कुल दुनिया पै मरती है, सुन कै जम कै दूत नाए तेरे छट जाहे। जम दूत नेड़े नहीं आ सकते, वह परमेश्वर की शरण विच आउण करके उन्होंने सुख पाया। उन्होंने ये लोग सुखी है, पर लोग सुहेले, नानक हर प्रभ आपे मिले। सतगुरु साहिब जी ने कृपा करके इलाही फुरमान की संखेप च विचार कराई। विचारा करद्या बहुत भुला होईया, सतगुरु साहिब जी गुरु की संगत अणजाण बच्चा जान के माफ करियो, होईया भुला की माफी करो कृपा। बुलाओ फतेह, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।
1: ए मन हर जी त्याए तू, एक मन एक चित पाए, हर किया सदा सदा वडियाइया, दे न पछुताए। धन धन साहब गुरु ग्रंथ साहब जी पावन दरबार दियां हाजरियां भर के इलाही बाणी दी कीर्तन ते कथा सरवण करके बख्शा लै रही परम सत्कार जो सत्संग जीओ। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। ये संत सत्कार जो ज्ञानी लखविंदर सिंह जी, जिन्होंने आप जी ने अज के हुक्मनामे की कथा सरवण करवाई है। गुरपूरे चरणी लाया, हर संघ सहाई पाया, पूरे गुरु की गल है, साडा गुरु पूरा है, संत गुरु ग्रंथ साहब जी। तो फिर मैं बख्शा की गल करता हूं, बख्शे का भाव है कि उसकी कृपा तो उन्होंने होंगी, जोड़े गुरु घर आते ने नकमस्तक होंगे ने, उन्होंने होर बधेरे होंगी जोड़े बैठ के कीर्तन से कथा सरवण करते हैं, उन्होंने होर बधेरे होंगी जोड़े बाणी जुड़ के अपना जीवन सफला करते हैं।

गाओ जी। हले भी जिन्नी संगत है उन्नी आवाज नहीं, ताई बोलिया करो, उंज सारा सारा दिन बोलते हैं, यही बोलिया परवान है।

0: परम सन्मान जो गुरु प्यारी साध संगत जीओ, दास ने अज पहली बार श्री जपजी साहब जी का संगत रूपी कीर्तन किया है। आस है भुलां की खिमा कर दोगे, सो आप जी असीसा देना ताकि अगों तो बाणी शुद्ध उच्चारण हो सके। सो भुलां की खिमा बख्शते हुए फतेह की सांझ पाओ। वाहेगुरू जी का खालसा, वाहेगुरू जी फतेह।
1: एक चकारा होर छड़िए जी।
2: बोले सो निहाल श्री अकाल।
1: सो बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब भाई सतनाम सिंह जी ते उन्होंने जज्जे का। समा नहीं है कि मैं आप जी नाल कोई सूचना साझी करा। असी तकरीबन 12 मिनट लेट हाँ, तो मैनू साइटेशन मिल गई है कि खालसा स्कूल लेट हो गया सी पिछली बारी 2 मिनट। इस बारी मैं बेनती करा सरकार योग ज्ञानी लखविंदर सिंह जी नूं कि वह 2 मिनट सानू पहला दे देन, ताकि असी खालसा स्कूल नूं पूरे टाइम से दे दीए। तो जिहड़े सुख आसन की सेवा निभाउण वाले उन्होंने बेनती जल्दी कर लैण, वह तो बाकी का प्रोग्राम बिल्कुल 2 मिनट पहला देंगे 2 तो अज आप, ताकि वह कंप्लेन ना कर सकन, साइटेशन ना मैनू देन जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।
0: 1:40 2 मिनट।

जी वाहिगुरु एक ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई त्याई फिर अंगद गुरते अमरदास रामदास हुई सहाय अर्जन हर गोबिंद नौ सिमरों श्री हर राय श्री हर कृष्ण त्याई है जिस डिठे सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरै घर नौ निदावै ताए सब थाई हुए सहाय दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी सब थाई हुए सहाय तसा पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पाठ दर्शन दीदार दा ध्यान करके बोलो जी वाहिगुरु। हे निमाणिया दे मान सतगुरु धन धन धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी आप जी ने कृपा की पावन पवित्र असीस रूप विच हुक्मनामा साहिब बख्शिश किया उपरंत आप जी के स्वरूप की सेवा हुई चौपाई साहिब बाणी दे पाठ होए बाणी पढ़द्या सेवा करद्या हुई भुलां दी आप जी ने खिमा बख्शिश करनी सतगुरु जी इस वक्त कृपा करो पावन प्रकाश स्थाना तो निज स्थाना वाल चाले पाउन दी आग्या बख्शिश करो जी अगले दीवान हाल नंबर एक विच सजाउन दी आप जी आग्या बख्शिश करो सही प्यारे मेल जिन्हां मिले आप जी का नाम चेतावे नानक नाम चढ़ती कला तेरे भाणे सरबत द